निर्भौ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी।

असंत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वड हत्या कमाए संत पापी पाप असंत कूड़े आर करे संत मलेच मार भग खाए असंत

का निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सुचे सोच न हो गई

अंत न जाई लखे आ रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालेओ जिन कीती सो पार पया। कहु नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया। सो दर राग आसा।

गावन तुतनो पवन पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित

सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जीव परया, शैल पत्थर मह जंतु पाए। ताका रिजक आगे कर धरिया, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भव करिया।

मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिधानु ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल साध बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया।

मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त।

जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहु नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संयम

बिनती चौपाई हमरी करू हाथ दे रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबे तुम काब हो आप हाथ दे मुहे बचाव हो सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सबे करतारा वो रक्षा निज कर दे करिए सब बैरन कौआ संगरिए पूर्ण हुए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाट कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा राख लिहु।

काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूतियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल

समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंज

साधन के सुखी एक एक पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकरक करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्त करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आदनील अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कच भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जीती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम पाव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार से है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरे हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मु सब होई दुष्ट चाह चव सकै न कोई।

सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हरनाले।

नाही घर तेरै। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर

को कुंचै तिस का हुए उधारु एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारु तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म।

गुण गोविंद गाही, सब सहनो कृपाल सुमाली, साही साही बिरथा कोई न जाए, जी आवे तुदे आही। श्लोक महल्ला पंजवा। अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाऊ, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाऊ, सतगुर सेती रत्या दरगह पाई ठाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वत दे, जग में उत्तम काटी यह विरले के महल्ला पंजवा।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

नानक घर के गोले। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूरन करम होए प्रभु मेरा। एह बिनंती सुन प्रभु मेरे, दे नाम कर अपने चेर। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला तीजा। काचा तन संच है मूरख गवार, मनमुख भूले अंध गावार। बिखिया कै

0: उत्तम ब्रह्म पछाणे को, सच साचा सच आप दृढ़ाए, नानक आपे विखे आपे सचला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोहेला राघोड़ी जिथी माला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय करती विसाखी है करते करो विचारो कित कर गावो। सोहेला सिवरे सृजनहार तुम गावो, मेरे निरभउ का सोहेला हों वारी जित सोहेल। सदा सुख होए रहा हो नित नित जी अड़े संभालियन, देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे। तिस दाते कवन सुमार संबत साह लिखिया, मिलकर पावो तेल देवो सज्जन सीसरिया जू हो सैब स्यू मेल। कर कर एहो पहुंचा सदरे नित पवन, सदन हारा सिमरे नानक छे दयावन। रागा समला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश, गुरु गुरे कुवे सनेक बाबा जय। कर करते कीरत होए सो कर राख बढ़ाई तोय रहाओ। विश्वे चसियां घड़ियां पैरां तिती बारी माओ, हुआ सूरज को रुत अनेक। नानक करते के केते वे सराग तनासरी महला पहला, गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका। मंडल जनक मोती धूप मल आन लो, पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खणना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजन तेरी राह। सहस तब नैन नना नैन है तुहे को, सहस मूरत नना एक तो ही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध इव चलत मोही। सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिसके चान, तिस दे चानन सब मह चानन होए। गुरसा ज्योत प्रगट होए ज्योतिष पावे, सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद मकरंद लोभित मनो। आन दिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारन को। होए जादे तेरे नाए वासा, राग गोड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर भो भरिया, मिल साधु कंडल कंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडाओ पुन वड्डा है। रहाओ साकत हर रस साध न जाने, तिन अंतर हो मैं कंडा है। जो जो चले चुके दुख पावे, जम काल सह है सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन मरण पौ खंडा है। अविनाशी पुरख पाए परमेश्वर, पौ सोभ खंड ब्रह मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो विनंती सुनो मेरे मीता। संत पहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा। आगे वसन सोहेला औद कटे, दिन सरै नारे मन गुर मिलका सवारे। रहाओ एव संसार विकार संसे में, सर्व ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे एव रस अगत पता तिन जानी। जा को आए सोए बिहा, जो हर गुरते मन है बसेरा। निज घर मैल पाओ सुख सहजे, बोर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे, मोक कर संतन की पूरे। अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे, कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी
1: का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
0: तो दया गए
1: और

वै नम है अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पाव कल कलेश तन माहि मिटाव सिमरो जास विसंबर एक नाम जपते अगंत अनेक वेद प्राण सिमरत सुदाख्यर कीने राम नाम एक आख्यर किनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै कांकी एक दस तुहारू नानकुन संग मोहे उदारू सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाउ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन विनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दर गहमानी प्रभ कै सिमरन हुए सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमर है जिन आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते उच्चा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मन जाए अमृत नामृत माहि समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरह से तनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन प्रवान प्रभु को सिमरह से पुरख प्रदान प्रभु को सिमरह से वे मोहताजी प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे प्रभु को सिमरह से सुखवासी प्रभु को सिमरह सुधा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला प्रभु को सिमरह से पर उपकारी प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरै तिन अनंत कनेरे प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभु कै सिमरन कारज पूरे प्रभ कै सिमरन कबू न झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सह समानी प्रभ कै सिमरन निचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन कांत न पार सिमरह से जन जिन कौ प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाय हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द

नानक के प्रभु साथ अष्टपदी। जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाप्यान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल हो वै अत भारी, हर को नाम किन माए उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनिक माया रंग तिख न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जे मार गिह जात अकेला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नामन सदा त्याई, नानक गुरमुख परम गत पाई। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत है पार पुराही। अनिक बिघन जय आई संगार है, हर का नाम तत्काल उदार है। अनिक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हौ मैला मल कबु न तोवै, हर का नाम कूट पाप खोवै। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाई साध कै संग। जे मार के गने जाहे न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा। जे पैटे मान दुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जय महाप्यान तपत काम, तै हर के नाम की तुम परछाम। जहा त्रिका मन तुझ आकर खै, तह नानक हर हर अमृत बरख। भक्त जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंगे कै, नानक जन कै बिरत विवेकै। हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परै न भंग। हर का नाम जन की वटे आई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाही बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन कुआ प्रभ दीना। हर हर जन कै ऊट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे। पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत ऋद्वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई, संत की सेवा नाम ते आई। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमूल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सुर ध्यान, खट शास्त्र सिमृत विख्यान। योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया, सगुर त्याग वन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कराती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै, मह उदास तपी सर थीवै। अग्न माए होमत पुराण, कनिक सव है वर भूमदान। न्यौली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम साधन। निमक निमक कर शरीर कटावे, तौ भी हम मैं न जावे।
ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੁਪਤ ਪਾਹੀ, ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ, ਗਰਭ ਗਮਾਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ, ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਰ ਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ, ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ, ਸੁਧ ਕਾ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤ, ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁਮੂਚ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਨਪ ਜਮਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ, ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸੰਨਾ ਧਰਾਪੈ, ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਗੰਨੀ ਬੁਝੈ, ਕੋਟ ਉਪਾਵ ਦਰਗਹਿਨੀ ਸਿਜੈ, ਝੂਠ ਸਨਾਹੀ ਉਪਿਆ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ, ਅਵਰ ਕਰਤੂ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੀ ਕੋ ਮਾਗੈ, ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ, ਜੀ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦਗਾਵੈ, ਜੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹੋ ਮੈਂ ਛੂਰੈ, ਜੀ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ, ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੈ, ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ, ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਵਾਪਿਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਈ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ, ਮਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਵੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੀ ਲੇਪਾ, ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ, ਨਿਤਾਵੇ ਕਉ ਨਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ, ਨਿਮਾਣੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇਵ ਦਾਨ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਨ ਹੋ ਆਪੇ, ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਵਰਾਤੇ, ਤੁਮਰੀ ਉਸਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸਕੋਏ, ਸਰਵ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ, ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ, ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਮ ਥਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਘਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਲੋਕ

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिंगारिया गर्भ अग्न में जिने उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरध पयाओ पर साक्षैन मुख पयाओ बैठ को दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श ले हो तो नानक सीजै जे प्रसाद धारु पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला जे प्रसाद भूगै सबरसा सगल समग्री संसात बसा दीने हस्त पाव करने तरसना तिसै त्याग वर संगरचना ऐसे दोख मुड़ंद व्यापे नानक काढ़ लियो प्रव्यापे आद अंत जो राखन हारु तिस्यो प्रीत न करे गुवारु जाकी सेवा नवनित पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सत सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगह मानु तिसै बिसारे मुग्ध अजान।

बाहर पे अंतर मलमाया, छप सुनाई कछ कर छुपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर ब्या पहलो सुवान, अंतर अग्न बाहर तन स्वाहा, गल पाथर कैसी तरह अथाह, जाके अंतर बसे प्रभ्या, नानक तेजन सह समात, सुन अंधा कैसी मार्ग पावे, कर गहले हो ओढ़ निभावे, कहां बुजारत बुझे डूरा, निष्कहिये तो समझे पूरा, कहा विष्णु पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुर भंग,

नानक तुमरी कृपा तरह संग सहाय सुआवै न चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै आनंद कील माया रंग रसै दृढ़कर मन है मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार महा लोभ त्रोह आहो जुगत बेहाने कई जन्म नानक राख लहो अपन कर कर्म तू

अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिखोट गवावे। एक भी ना दे दस भी हिर ले, तौ मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर स्यो नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा।

दुर्लभ भावै, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, भिन बूझे मिथ्या सब पए, सफल देहे नानक हर हर नाम लए, बिरसी साकत की आर जा, साच बिना कहूत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखावता कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाए, मेघ बिना ज्यो खेती जाए, गोविंद भजन बिन वृथे सब काम, ज्यो किरपन के निरारत धाम, धन धन तेजन जे घट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ, रह तवर कछवर कमावत, मन ही प्रीत मुखो गंड लावत, जानन हार प्रभु पर भी, बाहर भेख न काहू भी, अवर उपदेशय आप न करै, आवत जावत जन मैं मरै, जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार, जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानकुन जन चरण पराता, करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया या पैमाने, आप है आप आव करत नबीरा, किसे दूर जिनावत किसे बजावत नीरा, उपाव से आनु सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत, जिस पावे तिस लै लड़ लाए, तांतनंत रहा सुमाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी, श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सुजाए अहं मेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी, जेह प्रसाद छत्ति अमृत काहे, तिस ठाकुर कौ रख मन माही, जेह प्रसाद सुगंधित तन लावै, तिसको सिमरत परम गत पावै, जेह प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसह त्याए सदा मन अंदर, जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना, जेह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग, जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसे त्या कतवर लुभावै, जे प्रसाद सुख सेज सुविजै, मन आठ पहरता का जस गाविजै, जे प्रसाद तु सबको माने, मुख ताको जस रसन बखाने, जे प्रसाद तिरु रहता धर्म, मन सदा त्याए, केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जब दरगह मान पावै, नानक पत सेती कर जावै, जे प्रसाद अरो कंचन देही, लिव लावो तिस राम सनेही, जे प्रसाद तिरौ ला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत, जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पार ठाकुर प्रभ ठाके, जे प्रसाद तुझको न पहुँचै, मनसा सा सिमरहु प्रभु उच्चे, जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ताकी भगत करेहे, जे प्रसाद आपुखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों आलस की जय, जे प्रसाद अश्व हस्त सवारी, मन तिस प्रभ को कबहु न बिसारी, जे प्रसाद बाग मिलक तना, राख परोए प्रभ अपने मना, जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सद तिसै त्याई, तिसै त्याई जो एकल कै, इहां उहां नानक तेरी रखै, जे प्रसाद करै पुन बहुत दानु, मन आठ पैर कर तिसका ध्यानु,

सुप्रभ सिमरहो सदा अनूप ते प्रसाद त्रिनी की जात सुप्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै जे प्रसाद सुनै करण नाथ जे प्रसाद पिखै बिस्मात जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सह सुमावै ऐसा प्रभु त्याग।

ਸਦਾ ਸਿਉ ਰਾਚ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਓ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪੁ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੁ ਲਇਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭੋ ਤਿਤ ਲਗਹਿ ਹਰਿ ਨਾਥ ਨਾਨਕਿਨ ਕਹਿ ਕਛੂ ਨਹਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮੁਖਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮੁਖੂ ਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਏਕੂ ਪੁਰ ਜਤਨੁ ਸਾਧਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪੁਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਈ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਤੂ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨੁ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੇ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਬੀਗਾ ਪੈਰ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭੇ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਬੜਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿਆਈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੂੰ ਧਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹਿ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਦਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮੁ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨੁ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਾਮੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲੁ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੋਕਤ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਸੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮਿੱਠਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਵ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ਸਾਧਕ ਮਹਿਮਾ ਬੇਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੀਤਾ ਸੁਣੈ ਤੀਤਾ ਬਖਿਆਨੈ ਸਾਧਕ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧਕ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਝ ਤੇ ਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੇਦ ਨ ਪਾਈ ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨ ਭੇਖੈ ਕਿਛੁ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੋਕ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੌ ਸੋਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲਪਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ ਜਿਉ ਵਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਰ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਹੈ ਗੁਨਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਓ
ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तारू पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा, मने अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पय, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभु संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्या, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माही। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाय अदाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी कंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक उर धारै जो अंतरनाम, सर्व में पिखै भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानको पर सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पर, समन में प्रीत निरंजन दर्श। पर त्रै रूप न पेखै नेत्र, साध की टैर संसंग हेत। कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद विख्या पर हरै, मन की वासना मन ते टर। इंद्रिय चित पंच दोग ते रहै, तो नानक कोट मध्य को ऐसा परस। वैष्णु सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए पिन। कर्म करत हुआ नहीं कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग्राचय। मंथन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ ब्रह नाम जपावै, नानक को वैष्णु परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग। मनते बिन सह सगला भरम, कर पूजय सगल पार ब्रह्म। सासुन पापा मल खूव, तिस भगवती की मत उत्तम हो। भगवंत की टहल करै नितनीत, मंथन अर्पै विष्णु प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक कैसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबुदै, राम नाम आत्म सुदै। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित कै उदे जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो ना आवे। वेद प्राण सिमरत बुझै मूल, सुख मैं जाने अस्तूल। चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, सासु पावै जन कोए। कर कृपांतर उतारै, पस प्रेत मूत पात्र को उतारै। सर्व रूप का उकद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कितै न पाइय, धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया। तुर करम
जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिसने दरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सूझी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी युक्त नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा तुमितावे, जीवन मुख सुख आवे, तैसा हर्क तैसा सुख, सदा अनंत नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उसमाटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरता ईसाई जुगत नानक पुर कहिए, जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ, जित जित कर राखे, तैसा तिन्नाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभावे सोई फनो, पसर आप अंतरंग लखे न जाहे, पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य, तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल, सलोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रवरचि बहुविधनिक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पूजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारै, कई कोट कबका विचार है, कई कोट नवतन नाम त्यावै, नानक करते कंत न पावै, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपेगात्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को ही रह, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम आये, कई कोट परदेश प्रमाए, जित जित लावो तित लगना, नानक करते की जान न करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर वृक्ष निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्य सूर नखेत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूतार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राज ताम सात, कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र, कई कोट कीर्तन संबंध, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जकी नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा, सब ते निरह सबो ते दूर, नानका फलिप त्रया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन मह जीवै मरै, कई कोट भोजो नी फिरह, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट कालै थक पाहे, कई कोट कीर्तनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जय जय पाणा तै तै राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिन को मिलो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिन को हो आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट काणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जोत कीनो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एक कंकार, कई कोट कीने बपात, प्रभते हुए ब्रह्माय समात, ताकांत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोय, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सुधा निहार है को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै, अमर पैसा सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सह समावै, अपने जन को साथ साथ समारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभे कह, दूसर नाही कोए, नानक इस बले हार न, जल थिन मही रसोए, अष्टपदी करण करावन करने जोग, जो तिस पावै सोई हो, किनमे ताबो तापन हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा, हुक्मे तार तर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे उच नीच व्यवहार, हुक्मे निकरंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक समय रहा समाई, प्रभावै मानुगत पावै, प्रभावै तां पात्र त्रावै, प्रभावै बिन शास्त्र राखै, प्रभावै तां हर गुण भाकै, प्रभावै तां पत सुधारै, आप करै अपन विचारै, दोहां सिरिया काप स्वामी, खेलै विकसै अंतर जामी, जो भावै सुकार करावै, नानक दृष्टि अवरण आवै, कहु मानुक ते क्या हुए आवै, जो तिस भावै सोई करावै, इसके हाथ विच सब किछ ले, जो तिस भावै सोई करे, अनजानत विख्या मैं रचै, जे जानत अपना बचै, भरमे भूला दै जिस धावै, निमक माए चार कुंड फिरि आवै, कर कृपा जिस अपनी भग दे, नानक तेजन ना मिले, किन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवास,
जा का दृष्ट कछु न आवे किस तत्काल दा दृष्ट प्रगटावे जा को अपनी करे बख्शीश दा का लेखा न कने जगदीश जीव पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनता बनाई नानक जीवे देख वडाई इसका बल नाही सहात करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावे सोई पुंथियो कब हूँ उच नीच मह बसै कब हूँ सोग हरख रंग हसै कब हूँ निंद चिंद व्यवहार कब हूँ उपकाश पयाल कब हूँ बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिला बनहार कब हूँ नृत्य करै बपात कब हूँ सोए रह दिन रात कब हूँ महा क्रोध विकराल करूँ कब हूँ सर्व की हो तरवाल कबू हुए बह बड़ राजा कबू पेकारी नीच का साजा कबू अपकीर्त में आवे कबू भला भला कहावे क्यों प्रभ राखे तिव ही रहे गुरु प्रसाद नानक सच कहे कबू हुए पंडित करे बख्याल कबू मोहन धारी लावे ध्यान कबू तड़ती ते स्नान कबू सिर साधक मुख्यान कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया अनेक जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभावे तिवे निचावे जो तिस पावे सोई हुए नानक दूजा वर न कोए कबू सा संगत पावे उस शांति बौर न आवे अंतर हुए ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश मंथन अमृत एक रंग सदा बसे पार ब्रह्म कै संग ज्यो जल में जल आए कटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ के सद कुर्बान श्लोक सुखी बसे मस्किनी आए आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपति जिसके अंतराज विमान सो नरक पाती हो स्वान जो जाने मैं जो गुणवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहावे जन मरे बो जोन प्रमावे धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक यहां मुक्ता गै सुख पावे धनवंता होय कर गरबावे तृण समान का संग न जावे बोलस कर मान को पर करयास पल भीतर ताका होय विनाश सब थे आप जाने बलवंत खिन में हो जाए पसमंत किसे नव दयाप अहंकारी धर्म राय किस करे कुआरी गुर प्रसाद जा का मिटै अभिमान सो जन नानक दर गए परवान कोट कर्म करै हो तारी सुन पावे सगले बिरतारी अनिक तपस्या करे अहंकार नरक सुर फिर अवतार अनिक जितन कर आत्म नहीं द्रवै हर दर गए को कैसे गवै आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेंजा का मन होए कब नानक ता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निचल ना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सुजाए रब कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद ना नकाओ छूटे सहस कटे लग उड़तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनिक भोग बिख्या की करे न तृप्तावे खप कम रह बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ वृत्ते सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ का विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आपा प्रभ सोए जो किछ कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सबु कै संग बूझै देखे करै विवेका पै का पै अनेक मरण बिन से आवे न जाए नानक सद ही रहा सुमाय आप उपदेश समझे आप आपकी रचिया सब कह साथ आपकी नु अपन विस्तार सब कछ कहो करने हार उसते पिन कहो किछ होए तांत नंतर एक कह सोए अपने चलताप करने हार कौ तो करे रंग आपार मन में अमन अपने माए नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किन्ने बखियानी सच सच सत सब कीना कोड मधि किन्ने मिले चीना पला पला पला तेरा रूपा सुंदर पारणूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी श्रवण बखियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत सरण जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपति संत कै दुख नार जा कटै संत कै दुखन जम ते नहीं चुटै संत कै दुखन सुख सब जाय संत कै दुख नरक में पाए
संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखै न कोई, संत कै दुखन तान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संसंग निंदक भीतर है। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जो लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिग जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा में चलै, संत कै दुखन सब कुछ चलै, संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का था को नाहे, नानक संत पावै तो पीगत पाए, संत का निंदक मात ताए, संत का निंदक हंटिक न पाए, संत का निंदक मा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्वरो, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दुख मैं दोख, नान संत पावै तो उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसै का निमित, संत के दुखी को डां लागै, संत के दुखी को सब त्यागै, संत का दुखी माँ अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख टिटरै, संत के दुखी को ना ही ठाऊ, नान संत पावै तां लै मिलाए, संत का दुखी अत बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज न पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते तूता, ज्यों सास बिना मृतक की लोता, संत के दुखी की जड़ किछ ना है, अपन बीज आपे ही खाए, संत के दुखी गवर न रखनहार, नानक संत पावै तां लैयो भार, संत का दुखी बिल लाए, ज्यो जल बिहो मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यो पाव किंदर नहीं त्रापै, संत का दुखी चुटै केला, ज्यो गुआड़ तिलखेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमिथिया कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्योतिष पावै सोई तया, संत का दुखी विघड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी न मरै न जीवाइय, संत के दुखी की पुजै न आसा, संत का दुखी उठ चलै निराशा, संत का दुख न तृष्टै कोई, जैसा पावै तैसा कोई होए, पै किरत न मिटै कोई, नानक जानै सच्चा सोए, सब कर तिसक्यो करनै हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की स्तुति करो दिन रात, इसे त्याग सास गिरा सब कुछ वर्ता है, तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया, अपना खिलाफ करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिसा पर नाम दे बड़ भागी, नानक जन से श्लोक तजो सियान सुरजनो, सिमरो हर हर राय, एक आसा हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाय, अष्टपदि मानुक की टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक भगवान, जिसका दिया रह घाय, बहुत न दर्शन लग गया, मारा रखे कुआ, मानु कह कुछ नहीं आ, तिसका हुकुम सुखोय, तिसका नाम रखंड पुरोय, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोय, नानक बिघन न लाग गया कोई, उस्त मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो, सुधा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेटा कुरकारंग, सास मुगिन सह सब संग, चरण चलो बार गोबिंद, मिटै पाप जपिय हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर गैनान कूजल मथा, बड़पागी ते जन जग माहे, सदा सुधार के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गणि संसार, मंत्र मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, तुतकी सूझी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन्ह निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपना सुजै तिसकी जानो, तृष्णा बुझै सा संग, हर हर जस कह सर्व रोग ते हर जन रह, तन तिन कीर्तन केवल बख्यान, गृष्ट में सोई निर्वाण, एक ऊपर जे जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसै न लागै दूख, जिसको हर ब्रह्म मन चिते आवै, सो सं सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभु अपना कृपा करै, सो सेवक को किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद था सब बुझिया, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल, न कि जन्मै न किछ मरै, अपन चलता भी करै, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सगल मैं आप, पवन कि जुग दृष्टा थाप अविनाशी, ना ही किछ खंड, धारण तारे हो ब्रह्मंड, अलख पे पुरख प्रताप, आप जपाए तो नानक जाप, जिन प्रभु जाता सो सुभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभु के सेवक सगल उदाहरण, प्रभु के सेवक दुख विसारण, आपे मेल है कृपाल, गुरु का सब जप है निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनों कृपा करै बड़ पाकै, नाम जपत पावै विश्राम,
नानक तिन पुरख उत्तम करमान। जो किछ करै सो प्रभु कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाए होवै सो होए, करनै हार पछाणै सोए। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे ते समाए समाए, ओहि सुख निदान उन्हूं बने आए। आपस को आप दिनो मान, नानक प्रभु जाने को जान, श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभिरथा जननहार, जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपति। टूटी गार्डन हार गोपाल, सर्व जी आया पे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन बाहि, तिस ते विरथा कोई नाही। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभु आपे, आप अपन किया कछु न होए, जेसो प्राणी लोचै कोई, तिस बे नाही तेरा किच काम, गत नानक जपे कर नाम। रूपवंत हुए नाही मोह है, प्रभु की जो सगल कट सो है, धनवंता हुए क्या को गर्भ, जा सब किस तिसका दी अथर्व है। अतसूरा जे को कहा वह, प्रभु की कला बिना कहता वह, जे को हुए वह दादार, तिस देन हार जान गवार। इस गुर प्रसाद टूटै हो रोग, नानक सोजन सदा रोग, जो मंदिर को था मैं थमन, त्यों गुर का शब्द मन अस्तमन, जो पाखा नाव चढ़ तरह, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है, जो अंधकार दिख कुख प्रगाश, गुर दर्शन देख मन हुए बिगास, जो माव जान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जो प्रगटावे, तिन संतन की बांछो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूर काहे बिललाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख प्रभु देवन हार, अवर त्याग तू तिसै चितार, जो कछ करे सोई सुखमान, भूला काहे फिरे जान, कौन बसताई तेरे संग, लपट रहो रस लोभे पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पश्चिती कर जाहे, जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, था जब माले हो मन भूल, राम नाम हृदय में तो लाद के सुनता, समचाल अवर त्याग बिखिया जंजाल, तन तन कह सब कोय, मुख उचल हर दर गै सोए, एहो वापार विरला वापार है, नानक ता कह सद वलिहार है, चरण साध के तो इत पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की धूर करो इसनान, साधु पर जाइए कुर्बान, साध सेवा वड भागी पाइये, साध संगार कीर्तन गाइये, अनिक बिगंते साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रचा कह, उठ गई संत है दरियाया, सर्व सुख नानक थे पाया, मृत को जीवालन हार, भूखे को देवता दार, शरण दान जा की दृष्टि माए, पूर्व लिखे का लहना पाए, सब किस तिसका करने जो, तिस बिन दूसर हुआ न हो, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब त्योच निर्मल करनी, कर कृपा जिस को नाम दिया, नानक सोचन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रवचीत, भगत पग सुनिए त्यो लोए, जाके हृदय को हुए, सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुकैत, सची दिल सच आकार, सच वर्त सच आपासार, पार रंजन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग, किच त्रयो गुण ते प्रभिन्न, तिसे बुझाइ नानका, जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी। अविनाशी ब्रह्मन मैराग, मानु की तू प्रीत त्याग, तिस्ते पर नाही किच कोए, सब निरंतर एक को सोए, आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहिर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बख्शन, साथ तेरे की चरणी पाओ, नानक कै मन हो नाओ, मन सब पूर्ण सरना, जोग जो कर पाया सोई हो, हरण भरण जा का नेत्र भोर, तिसका मंत्र न जाने हो, रण ध्रुव मंगल सजा कै, सर्व तो सुनिए करता कै, राज में राज योग में जोगी, तप में तपिस्त्र ग्रिस्त में भोगी, त्याई ते भगत सुख पाया, नान किस पुर का किनंत न पाया, जा की लीला की मित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जन दे, जनदास नाम त्या वैसे, सुमत ज्ञान ध्यान जन दे, जनदास नाम त्या वैसे, त्यो गुण में जाकु परमाए, जन्म मरा फिर आवै, जाय ऊच नीत इसके स्थान, जैसा जिन आवै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करे रंग, नाना विदकिनो विस्तार, प्रभु विनाशी एकंकार, नाना चलत करे खिनमाए, पूरे हो पूर्ण सब ठाए, नाना बिलकर बणत बनाई, अपनी कीमत आप हिपाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार,
नाम के तारी पुरिया सब पवन नाम के संग उतरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सूजन गत पाए। रूप सत जा का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख समाय समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत्त सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जनजा कर दे प्रवेश सत नृत बुझै जे कोई नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सो करने हार वर्ण भूज करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष भाव है सो वर्तिया विस्मन विस्म भय विस्मार जिन बूझया तिसाया स्वाद प्रभ कै रंग राज जन रहे गुरु कै वचन पदार्थ लहे वे दाते दुख काट नहार जाके संग करे संसार जन का सेव सो वडभागी जन कै संग लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जा सुनता बुजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कर दे विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै ते निर्भउ होए पसाना जिस ते उपजा तिस माय समाना बस्त माहेले बस्त गडाई ताको पिन्ना कहना जाई बुझे बुझन हार बवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु धार है नानक सो सेवक साथ साथ सुमार है अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गत मित कोई न राखे प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक उस देव चे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा जिस प्रगटाया निकी कीरी में कल राखे भस्म करे लश्कर कोट लाखे जिसका सास न काट ताप ताको राख देख रहात मानस जतन करत बहुपात जिसके करत विरते जात मारण राखे और न कोई सर्व जिया का रखा सोई काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रबलक विडानी बार बार बार प्रभु जपिय पिय मृत्यु मन तंत्र पिय नाम रतंजन गुरमुख पाया तिसके चवर नाही दृष्टाया नाम तान नामो रूप रंग नामो सुकर नाम का संग नाम रजो जन त्रिपतानी मंत्र नाम में नाम समान उठत बैठ सोवत नाम कौ नानक जन कह सुदकाम भूलो जा जीवा दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात करे भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने सो रह समाय जो हुआ हो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने तिसकी महिमा कौन बखानू तिसका गुण कह न जानू आठ पै प्रभ सहजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओटले मन तने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु बचाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श पाव मिटावे और सियान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाओ तिसका संग सिख उतरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुरु सिखी करै प्रतपाल सेवक कौ गुरु सदा दयाल सिखी गुरु दुरमत मल हिरै गुरु बचनी हर नाम उचरै सतगुरु सिख के बंधन काटै गुरु का सिख विकार ते हटै सतगुरु सिख कौ नाम धन दे गुरु का सिख वडभागी हे सतगुरु सिख का हलत फल सुवारै नानक सतगुरु सिखो जी नाल सुमारै गुर कै ग्रह सेवक जो रहै गुर की आज्ञा मन में सह आप उसको कर कछ न जनावै हर हर नाम हृदय सत्यावै
मन विचै सतगुर के पात, इस सेवक के काज राज। सेवा करत हुए ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेव गुर की मत ले। बीस विश्वे गुर का मन माने, सो सेव परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुरु जिसे हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कच परम। सह सियान पुलया न जाइये, नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाइये। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसद चरण दत्त निर्मल रीत। भेट संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर गय गवे। सुनकर वचन करण आघाने, मन संतोखा तुम पतियाने। पूरा गुरु क्यों जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पिख है वो संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नान जिस भावे तिसले मिलाए। जे भाई कुछ तथानेक, सतपुर पूर्ण भवे। काहू बोलना पौचित प्राणी, कम गोचर प्रभ निर्बानी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाए। अनेक भगत बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिमरे। सद बलिहारी सदगुरु अपने, नान जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एव हरस पावे जिन कोय, अमृत पीवे अमर सोय। उस पुर का नहीं कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पैर हर का नाम ले, सच वदे सेव को दे। मुँह माया के संग न ले, मन मेरा कह हर हरे। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परमु दुख तहते नासे। तप्त माय ठाड वरताए, अनंत भया दुख ना ठेपाए। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। पौ चुका निर्भो बसे, सगल ब्याज मनते खै नसे। जिसका साथ इन कृपा तारी, सास सुन जप नाम मरारी। थित पाई चुके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जसरवन। निर्गुण आप सरगुण पियो, ही कला तार जिन सगली मोही। अपने चत प्रभाव बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिंदु जाना ही कोई, सर्व निरंतर को सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग, भय प्रकाश साध कै संग। रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन, विखिया सगली चार। हर हर नाम कमावना, नानक उतन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार। एक सिमर नाम आधार, और पाप समीत विसारो। चरण कुण हृदय में उतारो, कारण कारण सो प्रभ सम्रात। दृढ़ कर गहो नाम हर वाते, धन संचो हो भगवान। संत जना का निर्मल मंत, एक आसरा खो मन माहे। सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन कहो चार कुण टुटता वै, सो तन हर सेवा ते पावे। जिसो कहो नित बाचे मी, सो सुख साधु संग प्रीत। जिसो बाको करे भली करनी, सासु बापज हर की सरनी। अनिक पावी रोग न जाए, रोग मिटाए हर कदलाए। सर्व निदान में हर नाम निदान, जप नानक दुर्गा परवान। मन प्रभु तो हर कहनाए, दह दिस ताव ता बैठाए। ताकु बिघन लागे कोए, जाके हृदय बसे हर सोए। कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन सह पूर्ण होयास, भगत पाए आत्म प्रगास। तित कर जाए बसै विनासी, कहु नानक काटी जमपासी। तत् विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटै प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। रतन जन्म का होए उद्धार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनिक पावना छुटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करो मन लाए, मन बंचत नानक फल पाए। संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटाव है मूर्ख मना। सुत मीत कुटंबर बनता, इनते कहो तुम कवन सनाथा। राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार। असहस्ती रथ सवारी, झूठा डंप झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझे न बिगाना, ना विसार नानक पछताना। गुर की मातू ले आनी, भगत बिना बहु डूबे सियानी। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो ची। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे। आप जपहो अबरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो। सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाय नानु गुण गाओ। गुण गाव त्रियुत्र समैल, बिन सजाए हम मैं बिख फैल। उहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रासर नाम सुभाल। चाड़ सियानु सगली मना, सास संपावै सच तना। हर पूंजी संच करो बिहार, इहां सुख दर गै जयकार। सर्व ने अंतर एक को देख,
कहो नानक जाके मस्त कली एको जप एको सालाए एक सिमर एको मन आहे एक के गुण गावो अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हरे आप पूर्ण पूरे हो प्रव्याप अनिक विस्तार एक ते भई कराध प्राचित गए मंथन अंतर एक प्रवराता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरण आए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लायस्त बदी जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत करूं प्रभ की नितनीत एको टेको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख हुए अरस पावे बिरला कोए जिन चाक्या से जंत्र बताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजय चाहो साध कै संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रकाश अंदिन लिवलाग बटभागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेव किनु सदा निहाल बंधन काट मुख जन भया जन बंधु भ्रम गया इस पुनी श्रद्धा सब पूरी रव रहा सत्संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसर जी काल न भाने सो क्यों बिसर जी किया जाने सो क्यों बिसर जिन सब किश दिया सो क्यों बिसर जी जीवन जिया सो क्यों बिसर जगन में रख है गुर प्रसाद को बिरला लाख है सो क्यों बिसर जी विकते काट है जन्म जन्म का टूटा गाड है गुरपुरै तथे है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो यो कामान त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आव जपो वरै नाम जपावो भगत पाए तरिय संसार बिन भक्ति तन हो सीचार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुखा होत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रचाओ मंत्र अंतर ही सुहाओ नित्रो पेग दर सुख होए मन विकसे सा चरण धोए पगजना कै मन तर रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजै कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर्व समाए प्रभ अक्सन दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदपुर कारण करतार पगजना के प्राण आधार जो जो जपै सोए प्रनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीचे जा नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्वै कुंड मुक्त मुख पाए एक निम कर के गुण गाए अनिक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई भो भोजन का पुर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध सुन प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोग निर्गुण सरगुण सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जा बष्टपदी जब कार्य कछ न दृष्टिता पापन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समात तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्क सो कौ किस व्यापत जब

नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल धनी, तब बंध मुक्त कौ किस कौ गनी। जब एकै हर गम पार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए, तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जो तरै, तब कवन निडर कवन कत डरै। अपन चल ताप करने हार, नानक ठाकुर अगम पार। अविनाशी सुख अपनासन, तय जन्म मरण कौ कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जमकी त्रास कहो किस होए। जब अभिगत गोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त किच पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गाते, तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाते। अपन आपा पिए चर जा, नकापन रूपा पिय पर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तय कौन कुमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तय चल छिद्र लगत को कीश। जय जो स्वरूपी जो संसमावे, तय किसे भू कवन तृप्तावे। करन करावन करने हार, नानक करते का नाही समार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कलाया पै फिर दी, तह बेद कतेब का कोची। जब अपन आप आपुर धारै, तो सगन अब सगन का विचार है। जय अपन ऊच अपन आप नीरा, तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्मा, नानक अपनी गत जान हुआ। जय अचल छेद भेस माया, वहां किस है व्यापत माया। आपस को आप है आदेश, क्यों गुण का ना ही प्रवेश। जय कह एक एक भगवंता, ते कौन चिंत किस लागे चिंता। जय अपन आप आपतियारा, ते कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊचते ऊचा, नानक आपस को आप है पहुंचा। जय अवृत्यो प्रपंच कार, त्यो गुण में किन्नो विस्तार। पाप उनते पई कहावत, को नरक को सुर्ग वंचावत। हाल जाल माया जंजाल, हो मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की उपख्यान। अपन खेल आप कर देखे, खेल संकोचे तो नानक कह। जय अभिगत भगत आप, जय पसरै पासार संत प्रताप। दू पाकाया पेतनी, उनकी शोभानु बनी। आप कौत कर अनद चोज, आप रस भोग निर्जोग। जिस भावै तिस अपना इलावै, जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसमार था गंत्य तुलै, ज्यों बुलावो।

कोमलता के कर्म सब ते उच्चता की शोभा बनी। नानके गुण नाम सुखमनी सब ते उच्चता की शोभा बनी। नानके गुण नाम सुखमनी सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम। भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

लोक। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत देव सरात दोए दाई दाया खेले सगल जगत। चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो आपनी के नेड़ के दूर। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं छपाए छंद त्वा प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पाथ नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केह। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमित ओज कहि जय कोट इंद्र इंद्राण साहु सहान गणि जय। त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वा सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत कुजंग प्रयात छंद। नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतहमंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अशेदे नमस्तंग अगादे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सोएकय नमस्तंग अनेकय नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग नरकर्मे नमस्तंग नरपरमे नमस्तंग नरदेशे नमस्तंग नरपेशे नमस्तंग नरनामे नमस्तंग नरकामे नमस्तंग नरताते नमस्तंग नरकाते नमस्तंग नरतूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग नरतापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निधाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभुगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तंग जलाशरे नमस्तंग निराशरे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे आदेशंग आदेशे नमस्तंग अपेसे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्वामे। नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेव नमस्तंग अपेव नमस्तंग अजनमे नमस्तंग सुबनमे। नमो सर्वगौने नमो सर्वपहुने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग अभरणे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतंदे नमो सत अबंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे। नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो योग योगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले। चाचरी छंद त्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेक है अनाम है अकाम है आते हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान हैं निधान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अपूत हैं अपर्ण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंद हैं अबंध हैं निर्भूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अजा हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं नृसिक हैं निर्लंब हैं असंभ हैं
अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, आलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अभीत है, अभा है, आगाह है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, कुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमाने समस्ति निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पहुणे, अनंगी अनाथे, नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे, समस्ती स्वरूपे, प्रपंगी प्रमाथे, समस्ती विभूते, कलंकं बिनाने, कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजवेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगवेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज रजवेश्वरं परम वृद्धे, नमो शास्त्रपाणे, नमो अस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षिया परमी, अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगवेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो पुहुप पुहुपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं इष्टनानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो यंत्र यंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं करुणासी, अनूपे अरूपे समस्तं निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद्धकर्ता, अधो उर्ध अर्धं अगं ऊघहर्ता, परं परम परमेश्वरं पुरुषपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अशेदि अपेदि अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्तास्तकामं, तेरा जोर चाचरी शांद, जले हैं थले हैं, अपीत हैं अपे हैं, प्रभु हैं अजू हैं, आदेश हैं अपेश हैं, पुजंग प्रयात छंद, अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ति निधाने, नमस्तवं निरनाथे, नमस्तवं प्रमाथे, नमस्तवं अगंजे, नमस्तवं अपंजे, नमस्तवं अकाले, नमस्तवं अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत परीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतं, नमो सर्वपीतं, नमो सर्वगयानं, नमो परमतानं, नमो सर्वमंत्रं, नमो सर्वजंत्रं, नमो सर्वदृशं, नमो सर्वकृशं, नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे आखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी, चरपट शांत त्वा प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता, सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं, सर्वं भुगता सर्वं जुगता, सर्वं देवं सर्वं पेवं, सर्वं काले सर्वं पाले, रुआल शांत त्वा प्रसाद, आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव आपेव आद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल, यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रसाल, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख, आद पुरख उदार मूरत अजोन आद अशेख, देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग, यत्र तत्र दिशा विशा होय फैल्यो अनुराग, नाम काम विहीन पेखत तामहु नह जाहे, सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे, एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक, देव पेव न जानही जिह बेद और कतेव, रूप रंग न जात पात सो जानही केह जेब, तात मात न जात जाकर जानम मरण बहीन, चक्र बकर फिरै चतुर चक मानई पुर तीन, लोक चौदह के बिखै जग जापही जिह जाप, आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह था, परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार, सर्व स्वरच्यो स्वयंभव गणन पंजन हार, कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश, धर्म धाम सो भरम रहत अभूत अलख अपेश,
ਅੰਗ ਰਾਗ ਨ ਰੰਗ ਜਾਕੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਨਾਮ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ ਮੁਕਤ ਦਾਇਕ ਕਾਮ ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨ ਉਸ ਤਤ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਵਧੂਤ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਆਦ ਰੂਪ ਅਸੂਤ ਅੰਗਹੀਨਾ ਭੰਗ ਅਨਾਤਮ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਕਾਇਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰ ਸਰਬਗੰਤਾ ਸਰਬਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੇਖ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਜਾਣਹੀ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪਰਮ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾਕੈ ਨੇਤ ਭਾਖਤ ਨਿਤ ਕੋਟ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਆਵਹੀ ਵਹ ਚਿਤ ਮਧੁ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤੁਅ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣਗਨ ਉਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਆਸਨ ਅਪੰਗ ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਸ ਦਿਨ ਅਨਾਸ ਆਜਾਨ ਬਾਹੋ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹੋ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਇੰਦ੍ਰਾਨ ਇੰਦ੍ਰ ਬਾਲਾਨ ਬਾਲ ਰੰਕਾਨ ਰੰਕ ਕਾਲਾਨ ਕਾਲ ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ ਆਭਾ ਅਪੰਗ ਗਤ ਮਿਤ ਅਪਾਰ ਗੁਣਗਨ ਉਦਾਰ ਮੁਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਿਰਭੈ ਨਿਕਾਮ ਅਤ ਦੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਿਤ ਗਤ ਅਖੰਡ ਆਲਿਸ਼ਯ ਕਰਮ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਧਰਮ ਸਰਬਾ ਪ੍ਰਣਾਢੈ ਅੰਡੰਡ ਬਾਢੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤੁਅ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰਿਯੰ ਕਰਿਯੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਅਕਾਮੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਹਰਤਾ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਜਾਣੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਭਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਪਾਲੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਕਾਲੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਪਾਸੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਮਾਨੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਨ ਸਤ੍ਰੈ ਨ ਮਿੱਤ੍ਰੈ ਨ ਭਰਮੰ ਨ ਪਿੱਤ੍ਰੈ ਨ ਕਰਮੰ ਨ ਕਾਏ ਅਜਨਮੰ ਅਜਾਏ ਨ ਚਿੱਤ੍ਰੈ ਨ ਮਿੱਤ੍ਰੈ ਪਰੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤ੍ਰੈ ਪ੍ਰਥੀਸੈ ਆਦਿਸੈ ਅਦ੍ਰਿਸੈ ਅਕ੍ਰਿਸੈ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤੁਅ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥਤੇ ਕੇ ਅਸ਼ਿਜ ਦਿਸੈ ਕੇ ਅਭਿਜ ਭੇਸੈ ਕੇ ਅਗੰਜ ਕਰਮੈ ਕੇ ਅਭੰਜ ਭਰਮੈ ਕੇ ਅਭਿਜ ਲੋਕੈ ਕੇ ਆਦਿਤ ਸੋਕੈ ਕੇ ਅਵਧੂਤ ਵਰਨੈ ਕੇ ਬੇਭੂਤ ਕਰਨੈ ਕੇ ਰਾਜੰ ਪ੍ਰਭਾਹੈ ਕੇ ਧਰਮੰ ਧੁਜਾ ਹੈ ਕੇ ਆਸੋਕ ਵਰਨੈ ਕੇ ਸਰਬਾ ਅਭਰਨੈ ਕੇ ਜਗਤੰ ਕ੍ਰਤੀ ਹੈ ਕੇ ਸ਼ਤਰੰ ਛਤਰੀ ਹੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰ ਸਰੂਪੇ ਕੇ ਅਨਭਉ ਅਨੂਪੈ ਕੇ ਆਦ ਅਦੇਵ ਹੈ ਕੇ ਆਪ ਅਭੇਵ ਹੈ ਕੇ ਚਿਤਰੰਗ ਬਹੀਨੇ ਕੇ ਏਕੈ ਅਧੀਨੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰਜ਼ਾ ਕੈ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਹਾਕੈ ਕੇ ਪਾਕ ਬੇਐਬ ਹੈ ਕੇ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਹੈ ਕੇ ਅਫਬੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕੇ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹ ਹੈ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕੇ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬੰ ਦਲੀ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਿਆ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦਾਨਿਆ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਗੌਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭਾਉਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸਾਇ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸਾਇ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜਾਇ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਸਾਜੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੀਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਲੀਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਜਾਹੋ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਪਾਹੋ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸਾਇ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸਾਇ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਕਾਲੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਪਾਲੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਹੰਤਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਗੰਤਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਕਾਜੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜਾਇ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਸੋਖਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਪੋਖਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਤ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਿਆ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਜਾਪਿਆ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਇੰਦਰਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਚੰਦਰਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਮੈਂ ਕੇ ਪਰਮੰ ਫਾਹੀ ਮੈਂ ਕੇ ਆਕਲ ਅਲਾਮ ਹੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕੇ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਰਜ਼ੂ ਹੈ ਹਮੇ ਸੋ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀ ਖਤਮੁਦਾਮੈ ਗਨੀਮੁਲ ਸਿਕਸਤੈ ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸੁਤੈ ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨੈ ਜ਼ਮੀਨਲ ਜ਼ਮਾਨੈ ਤਮੀਜ਼ੁਲ ਤਮਾਮੈ ਰਜ਼ੂਅਲ ਨਿਧਾਨੈ ਹਰੀਫਲ ਅਜ਼ੀਮੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨੈ ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੁਯੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਓਂ ਆਦ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਤ੍ਰਿਵਰਗੰ ਤ੍ਰਿਵਾਦੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਦੇ ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ ਸੁਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਛਿਜ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਕੇ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀਵਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ
निरुक्त प्रभा हैं, सदैव सदा हैं, विभुगत स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विभुगत प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेक है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अपूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अपगत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अपेक है, अटा है, अगा है, अगम्भ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, आजाद है, चरपट शांत त्वा प्रसाद, सर्वंहंता, सर्वंगंता, सर्वंख्याता, सर्वंज्ञाता, सर्वंहर्ता, सर्वंकर्ता, सर्वंप्राणंग, सर्वंप्राणंग, सर्वं कर्मं, सर्वं कर्मं, सर्वं जुगता, सर्वं मुक्ता, सवल शांत त्वा प्रसाद। नमो नर्कनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं वेभूते परमात्म प्रमाते सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्राय न पुत्राय न सत्राय न मित्राय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत्वा प्रसाद। के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशो सलाम है, समस्तुल कलाम है, के साहिब दिमाग हैं, के हुसनल चराग हैं, के कामल करीम हैं, के राजक रहीम हैं, के रोजी दहंद हैं, के राजक रहंद हैं, क्रीमुल कमाल हैं, के हुसनल जमाल हैं, गनीमुल खिराज हैं, ग्रीबुल नेवाज हैं, हरीफुल सिकन हैं, हिरासुल फिकन हैं, कलंकन प्रणास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजुल गनीम हैं, रजाइक रहीम हैं, समस्तुल जुबा हैं, के साहिब की राह हैं, की नरकन प्रणास हैं, बहसुल निवास हैं, के सरबुल गवन हैं, हमेशुल रवन हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परम परम ईस हैं, समस्तुल अदीस हैं, अदेशुल अलेख हैं, हमेशुल अपेक हैं, जमीनल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, क्रीमुल कमाल हैं, के जुरत जमाल हैं, के अचलंग प्रकाश हैं, के अमितो सुभाष हैं, के अजब स्वरूप हैं, के अमितो विभूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलंग अनंग है, के अमितो अपंग हैं, मधुभार शंतवा प्रसाद। मुनमन प्रणाम गुणगन मुदाम, अर्पर अगंजो हर नर प्रपंजो, अनुगन प्रणाम मुनमन सलाम, हर नर अखंड बरनर अमंड, अनुभव अनाश मुनमन प्रकाश, गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम, अंशज अंग आसन अपंग, उपमा अपार गतमित उदार, जल थल अमंड दिस्विस अपंड, जल थल महंत दिस्विस बेअंत, अनुभव अनाश त्रित तर तुरासु, आजान बाहो एक सदाहु, ओंकार आद कथनी अनाद, खलखंड ख्याल गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम चित चरण नाम, आज अंशे जगात आज जिना बात, अन झंझ गात अन रंज बात, अन टट भंडार अन ठट अपार, आडीठ कर्म अत टीठ कर्म, अणब्रण अनंत दाता महंत, हर बोल मना शांत तुआ प्रसाद। करुणालय है अर्काल है, खलखंडन है महमंडन है, जगतेश्वर है परमेश्वर है, कल कारण है सर्वोबारण है, त्रित के तरण है, जाग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वम्बर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खालखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, अथपा तप है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अमृतामृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, तारणी तृत है, अमतेश्वर है परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अजबाकृत है, अमृतामृत है, नरनायक है, खालकायक है, विश्वम्ब्र है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्वपायक है, भव भंजन है, आर्य गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे,
नमो राजसंग तामसंग सात रूपे नमो परम तत्ंग अततंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो उपमंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री छंद अजय अलय अपह अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटहा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग बेबूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासे सुकर्मंग बेबूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेबूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेबूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एको ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं त्वा प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरयो कर योग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधावेक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप पहली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे इते भय तो कहाँ पहे भूपत अंत कौ नंगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश देशान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही हाय राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गनय नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बेन अंत कौ अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जात तार सब सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बटे प्रयार अब चारा है स्वार की तार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंद साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सवय अब लोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इस नानक जादक दान अनेक सुअम्र साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पाग ते नर फिर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बख ध्यान लगायो नहत फ्रियो लिए सात समुद्रन लोक गयो प्रलोक गवायो बासकियो बिख्यान सो बैठो काय ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो
काहू लै पाहन पूज करियो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर आवाची दिशा में, काहू पशा को सीस नेवायो। को बुतान को पूजत है पाश, को मिरतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। को बुतान को पूजत है पाश, को मिरतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੈ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਵ ਚਰ ਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मुहे बचावहो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन को आज संगरियै, पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया। आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बापतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेवकियो, बेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जचन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घाट घाट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना है, घाट घाट के पट पट की जाना है। जब उद करक करा करतारा, प्रजा भरत तब देह अपारा। जब अकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहते।

एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जे रज से तज कीने ओत भोज खान बहुर राच दीने कहूँ फूल राजा हुआ बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारो असिख संग्रो दोष जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जे अस तो जिताव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवाय मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आया है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मोह हर हो रिद सिद कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वय सकै न कोई एक बार जिन तुमै संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग के तमै शरण तिहारी आप हाथ दलिहु उबारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लेहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्रता किल बेख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस तुज जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो जाहि सुरस न पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर की रहै हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै चौपाई संबत सत्रह सहस पण जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीरस पद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे सब तुहे बखान्यो दोहरा सगल दुआ

सकल द्वार कौ छाड कै गहे तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया। सहज सेती मन वजियां वादाइयां, राग रतन परवार परियां। शब्द गावण आईयां शब्दोता गावह हरि केरा, मन जने वसाया। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा, कार्य सब सवारणा। सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनहो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है। जिस देह सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावै। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहेबो क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख, मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो, जिस दियां ए वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे। कला जित घर धारिया, पंच दूत तुद वासो कीते। काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया, तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कहे नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे।

देहे ने माणी, देहे ने माणी लिवै बाजा हो, क्या करे वेचारिया। तुद बाज समरथ कोए नाही, कृपा कर बनवारिया। इस नाउ होर खाओ नाही, शब्द लाग सुवारिया। कह नानक लिवै बाजा हो, क्या करे वेचारिया। आनंद आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किल वेख कटे, ज्ञान अंजन सारिया। अंदर हो जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सचै सवारिया। कह नानक एहो आनंद है, आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू दे सोई जन पावै, पावै तां सो जन दे। जिसनू होर क्या करै वेचारिया। एक भरम भूले फिरै दह देसो, एक नाम लाग सुवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिना भाणा पावै। कह नानक जिस देह प्यारे, सोई जन पावै। आव हो संत प्यारे हो, आकथ की करह कहानी। करह कहानी आकथ केरी, कित दुआरे पाईऐ। तन मन धन सब सौंप गुर कौ, हुक्म मन्नै पाईऐ। हुक्म मन्ने हो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संत हो, कथे हो आकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने न पाया, चतुराई न पाया किने। तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया तमोहनी तिने कीती। जिन ठगौली पाईया, कुरबान कीता तिसै विटौ। जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटुंब तू जे देखदा। चलै नाही तेरे नाले, सास तेरे चलै नाही। तिस नाल क्यों चित लाइयै, ऐसा कम मूले न कीचै। जित अंत पछोताइयै, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। अंतो न पाया किने तेरा, अपना आप तू जानहे। जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाणाए। आख है ता वेख है सब तू है, जिन जगत उपाया। कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख पर सुन आया। लब लोभ अहंकार चूका, सत गुरु भला पाया। कह नानक जिसनु आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता। हां केरी बिखम मार्ग चलना, लाभ लोभ अहंकार। ताज तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्ने ओह तिखी वाल हो निकी। एत मार्ग जाना, गुर प्रसादे जिने आप तजिया। हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगता जुग जुग निराली। ज्यों तू चलाहे तिव चलै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए तिव चलै, जिना मार्ग पावहे। कर कृपा जिन नाम लाहे, से हर हर सदा ते आवहे। जिसनु कथा सुनाहे अपनी, से गुरुद्वारे सुख पावहे। कह नानक सच्चे साहेब, ज्यों पावै तिव चलावहे। एहो सोहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहेला। सतगुरु सुनाया, एहो तिन कै मन वसया। जिन धुरहों लिखिया आया, एक फिरै कनेरे कर है गल्ला। गली किने न पाया, कह नानक शब्द सोहेला। सतगुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर त्याया। हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों, पवित संगत सबाइया। कहंदे पवित सुनदे पवित, से पवित जिनी मन वसाया।
कहे नानक से पवित जिने गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै विण सह जाए सहसा न जाए नह जाए सहसा पितै संजम रहे कर्म कमाए सहसे जियो मलीन है पित संजम धोता जाए मन धोवौ शब्द लागहो हर सिउ रहौ चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एह सहसा इव जाए जियो मैले बारोह निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया ए तिशना वड्डा रोग लगा मरण मन होवे सारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर हज्यों बेतालिया कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिन जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारोह निर्मल बारोह ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुचै नाही मन सा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेति सन मुख होवै होवै ता सन मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मै संभाले आप छड सदा रह परण गुर बिन अवर न जाने कोए कहे नानक सुनो संतो हो सो सिख सनमुख होए जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होरथ है कोई पुछहो बबेकियां जाए अनेक जूनी भरम आवै विण सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो विण सतगुर मुक्त न पाए

रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। सेव सकत आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखाए गुरमुख किसे बुझाए। तोड़े बंधन हुवे मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो हुवे एकस स्यों लिवलाए। कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततै सार न जानी। ततै सार न जानी गुरु बाजौ ततै सार न जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहण विहाणी। गुर किरपा ते से जन जागे जिना हर मन वसया। बोलै है अमृत बाणी कहे नानक सो तत् पाए। जिसनु अन दिन हर लिव लागै जागत रहण विहाणी।

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तो सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिना दे खुले दर्शन दी दार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणिया दे माण सतगुरु, ने ताणिया दे ताण, ने ओटिया दी ओट, ने आसरिया दे आसरा, सचे पिता धन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, गुरगद्दी ते विराजमान दसाही पातशाहियां दी जागदी जोत, हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कलां भरपूर धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप जिया का कोटान कोट शुक्र है पातशाह जी। अमृत वेले तो लैके महाराज जी पावन तख्तां ते प्रकाशमान हो करके खुले दर्शन दीदार बख्श रहे हो सतगुरु जी। आप जिया दे पावन अस्थान सिख गुरुद्वारा सनहोजे विखे महाराज जी अमृत वेले दे दीवान सजाए गए, सजे दीवाना दे विच सतगुरु जी संपूर्ण श्री सुखमणी साहिब जी दे पाठ होए, उपरांत नितनेम दीआं पंज बाणियां दे पाठ होए। महाराज जी बाणी पढ़दियां सुनदियां सेवा करदियां विचरदियां होईयां बेअंत भुलां दी खिमा करनी, बाणी सोध के सचखंड दर पनवान कर लैणी, बाणी दा फल भाव महाराज जी दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा, बाणी अनुसार जीवन बख्शिश करना, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बचाउणा, सिखी सिदक केसां सुआसां संग निभाउणा। महाराज जी दाराइयां संगतां दीआं हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनियां, सब दी हाजरी लेखे लाओ दरों करों सिखी सिदक भरोसा, नाम दीआं दातां तंदरुस्ती दीआं दातां बख्शिश करनियां। महाराज जी गुरमत अनुसार सभना दीआं भावनावां संपूर्ण करनियां। सतगुरु जो संगतां घरां दे विच बैठ करके महाराज जी मीडिया दे राहीं आप जीआं दी याद विच जुड़ियां ने, तिना दी अरदास सभना नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी, परिवारां दे विच सुख शांति वरतौणी, नाम दा प्रगास करना दुखां दा नाश करना, बच्चियां नूं बाणी अते बाणी दे नाल जोड़ लैणा, सत संगत दे नाल रला लैणा। महाराज जी दर घर दे टहलियां नूं तंदरुस्ती चढ़दी कला बख्शिश करनी। महाराज जी भै भावनी सदका अपनी सेवा करन दे लाहे प्रदान करने। सतगुरु शुक्र है पातशाह जी रैण सुख दी बतीत कीती, आया चार पैर दिन अपनी याद विच सुख दे नाल बतीत करवाना, सर्वत्र संगत दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना। सतगुरु जी आप जीआं दीआं बख्शियां होईआं दातां विचों कड़ा प्रसादी देग हाजर है। महाराज जी कृपालता करके भोग लाओ जी, भोग लगा शीत प्रसाद साध संगत ते रसनी योग होवे। महाराज जी जो शके सो आप जीआं दा नाम जपे, जिन्हां भंडारे चो रस्तां बस्तां हाजर होईआं भंडारे भरपूर करने, काल कंटक चूर करने रस्तां दरगाहों भेजणियां। महाराज जी करो कृपा, पावन पवित्र हुक्मनामे बख्शिश करके अगले दीवान सजाउण दी

सत जुग रख संतोख का धर्म गैरथ बाहू त्रित रथ जत का जोर गैरथ बाहू द्वापर रथ तपे का सत गैरथ बाहू कल जुग रथ अगन

रहरासी रहरास है, पैरी पै जग पैरी पाया, गुरमुख सुख फल अमर पद अमृत बिरख अमृत फल लाया। गुरु चेला चेला गुरु, पुरखों पुरख उपज समाया, वर्तमान विहि विसवे होए इक ही, सहज कर आया सच्चा अमर अमर वरताया। हर की वडियाई हो आख ना सका, हो मूर्ख मुग्धनी जान, जन नानक को हर बख्शला मेरे स्वामी सरना।

कंत सवारी हर हर स्यो निहो रचाया आप गवाया ता फिर पाया गुर का शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई

0: बिन वणत नानक गुर चरण लागे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ਔਰਕ ਤੇਰੇ

है। ऐसा बणज करहु गृह भीतर, जित उतरै भूख प्यासा है। सगले कर्म धर्म जुग साधा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लाधा। भई कृपा नानक सतसंगे, तौ धन फिर आनंद उलासा है। धन अंधी फिर चपल सियाना, पंच तत् का रचन रचाना। जिस वखर को तुम आए हो, सो पायो सतगुर पासा है। धन कह तू वस मैं नाले, रह सुखवासी बाल गोपाले।

जिचर राखै तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता ऊठ सिदासा हे। जो प्रय वचन कहे, जो प्रय वचन कहे धन साचे, धन कछु न समझै चंचल काचे।

रे बिन सतगुर पच मुए साकत निगुरे गल जम फासा हे मन मुख आवै मन मुख जावै मन मुख फिर चोटा खावै जितने नरक से मन मुख भोगै गुरमुख लेप न मासा हे गुरमुख सोए जे हर जीव पाया तिस कौन मिटावै जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाऊ पया गल खासा हे हौं बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विछड़ना कत ही जासा हे गुण निदान किछ कीम न पाई घट घट पूर रहो सब ठाई

हे हरखवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्व उजाला रूप करे कर देखै विगसै आपे ही आप पूजा है।

नित नित रंगा कटे नाही तोली जाहे। बारह कंचन शुद्ध कराया नदर सराप वन्नी सचड़ाया। परख खजाने पाया सराफी फिर नाही ताई जाहे। अमृत नाम तुम्हारा स्वामी नानक दास सदा कुर्बानी। संत संग महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे। मारू महला पंजवां सोलहे एक

गुर सास्त सिमरत खट करमा, गुर पवित्र अस्थाना है। गुर सिमरत सब किल बिख नास है, गुर सिमरत जाम संग न फास है। गुर सिमरत मन निर्मल हुवे, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक न जाए, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याए। गुर का सेवक साध संग पाए, गुर करदा नित जीदा नाही। गुर द्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए। कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगाह देवे माना है। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन न भगती, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्याना है। गुर मिलया सब तृष्ण बुझाई, गुर मिलया नह जो है माई। सत संतोख दी

आदि निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वरतै आप निरारा, वर्ण जात चिहिन नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपाय दा। लख चौरासी जो न सबाई, मानस कौ प्रभ दी वडियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाए दा। कीता हुवै तिस क्या कहियै, गुरमुख नाम पदार्थ लहियै, जिस आप भुलाए सोई भूलै, सो बूझै जिसै बुझाए दा। हरख सोग का नगर इहो किया, से उबरे जे जो सतगुर सरणैया, त्रिहा गुणा ते रह निरारा, सो गुरमुख सोभा पाए दा। अनिक कर्म किए बहुतेरे,

कलयुग में कीर्तन परदाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप तरै सगले कुल तारे, हर दर्द है पत स्यों जाएदा, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काल है वस आप प्रभ किया, निहचल एक आप अविनाशी, सो निहचल ज्योतिषै त्याएदा, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानु मानस देहा, ज्यों जल तरंग उठै बहु भाती, फिर सललै सलल समाएदा। एक जाचिक मंगै दान द्वारै, जा प्रभ भावै ता कृपा धारै, देहो दर्श जित मन तृपतासै, हर कीर्तन मन ठहराएदा। रूड़ो ठाकुर कितै वस न आवै, हर सो किछ करे जे हर क्या संता भावै, कीता लोड़न सोई करायन, दर फेर न कोई पाएदा। जिथे आओ घट आए बनत है प्राणी, तिथे हर त्याई सारंग पाणी, जिथे पुत्र कलत्र न बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएदा। वड्डा साहिब अगम थाहा, क्यों मिलिए प्रभ वे परवाहा, काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा पाएदा। हुकम बूझै सो सेवक कहियै, बुरा भला दुए संसार सही है, हौ मैं जाए ता इको बूझै, सो गुरमुख सहज समाएदा। हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी, अनिक रंग करै बहु भाती, ज्यों पिता पूत लाड़ाएदा। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिए जा लय मिलाई, गुरमुख प्रगट भया तिन जन कौ, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएदा। तू आपे करता कारण करना, सृष्ट उपाय धरी सब धरना, जन नानक शरण पया हर द्वारै, हर भावै लाज रखाएदा। मारू सोलहे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो दिसै सो एको तू है, बाणी तेरी श्रवण सुनिए, दूजे अवर न जाप सकाई, सगल तुम्हारी धारणा, आप चितारे अपना किया, आपे

पौन पानी वै संतर सिमरह, सिमरह सगल उपार जना, सिमरह खंड दीप सब लुआ, सिमरह पाताल पुरिया सच सुआ, सिमरह खानी सिमरह बाणी, सिमरह सगले हर जना, सिमरह ब्रह्मे विष्णु महेशा, सिमरह देवते कोड़ तेतीसा, सिमरह जख दैत सब सिमरह, अगणत न जाई जस गणा, सिमरह पस पंखी सब भूता, सिमरह बन पर्वत अवधूता, लता बली साख सब सिमरह, रव रहया स्वामी सब मना, सिमरह थूल सूखम सब जनता, सिमरह सिद्ध साधिक हर मनता, प्रग गुप्त प्रगट सिमरह प्रभ मेरे, सगल भवन का प्रभ तना, सिमरह नर नारी आश्रमा, सिमरह जात जोत सब वरना, सिमरह गुणी चतुर सब बेते, सिमरह रैणी अर दिना, सिमरह घड़ी मूर्त पल निमका, सिमरह काल अकाल सुच सोचा, सिमरह सौन शास्त्र संजोगा, अलख न लखिय एक किना, करन करावन हार स्वामी, सगल घटा के अंतर जामी, कर कृपा जिस भक्ति लाभ हो, जन्म पदार्थ सो जिना, जाकै मन बूठा प्रभ अपना, पूरे कर्म गुर का जप जपना, सर्व निरंतर सो प्रभ जाता, बहुड़ न जोनी परम रुना, गुर का शब्द वसै मन जाकै, दुख दर्द भ्रमता का भागै, सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना, सो तनवंता जिन प्रभ त्याया, सो पतवंता जिन साध संग पाया, पार ब्रह्म जा कै मन उठा, सो पूर कर्मा ना छिना, जल थल महियल स्वामी सोई, अवर न कहिए दूजा कोई, गुर ज्ञान अंजन काट्यो भ्रम सगला, अवर न दिसे एक बिना, ऊचे ते ऊचा दरबारा, कहन न जाई अंत न पारा, गहर गंभीर था स्वामी, अतुल न जाई क्या मिना, तू करता तेरा सब किया, तुझ बिन अवर न कोई बिया, आद मद अंत प्रभ तू है, सगल पसारा तुम तना, जम दूत तिस निकट न आवै, साध संग हर कीर्तन गावै, सगल मनोरथ ताके पूरन, जो श्रवणी प्रभ का जस सुना, तू सबना का सब को तेरा, साचे साहिब गहर गंभीरा, कहो नानक सेई जन उत्तम, जो भाव है स्वामी तुम मना, मारू महला पंजवा, प्रभ समरथ सर्व सुख।

हर निर्मल रापै मंगना। श्रवणी सुनो बिमल जस्वामी, एका ओट तजो बिख कामी। निव निव पाए लगो दास तेरे, कर सुकृत नाही संगना। रसना गुण गावे हर तेरे, मिटह कमाते अव गुण मेरे। सिमर सिमर स्वामी मन जीवे, पंच दूत तज तंगना। चरण कमल जप गोहित चरिये, संत संग मिल सागर तरिये। अर्चा बंदन हर समत निवासी, बहुड़ जौन ना नंगना। दास दासन को कर ले हो गोपाला, कृपा निदान दीन दयाला। सखा सहाई पूरन परमेश्वर, मिल कदे न हो भी भंगना। मन तन अर्प धरी हरिया गै, जन्म जन्म का सोया जागै। जिसका सा सोई प्रतपालक, हत त्यागी हौमै हंतना। जल थल पूरन अंतर जामी, घट घट रव्या अछल स्वामी। भरम भीत कोई गुरपूरै, एक रव्या सरबंगना। जत कत पेको प्रभ सुख सागर, हर तोट भंडार नाही रतनागर। अगह अगाह किच मित नहीं पाईऐ, सो बूझ है जिस किरपंगना। छाती शीतल मन तन ठंडा, जन्म मरण की मिटे डंजा। जन्म मरण की मिट भी डंझा, कर गह काट लिए प्रभ अपने। अम्योतार दृष्टंगना, एको एक रव्या सब ठाई। किस बिन दूजा कोई नाही, आद मद अंत प्रभ रव्या। कृष्ण बुझी जपत त्रिशन बुझी परमंगना। गुर परमेश्वर गुर गोबिंद, गुर कर्ता गुर सद बख्संद। गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना। जो पेखा सो सब किच स्वामी, जो सुनना सो प्रभ की बानी। जो कीनो सो तुम्हें करायो, शरण सहाई संत है तना। जाचक जाच है तुम्हें अराध है, पतत पावन पूर्ण प्रभ साध है। एको दान सर्व सुख गुण निद, आन मंगन ने किंचना। काया पात्र प्रभ करने हारा, लगी लाग संत संगारा। निर्मल सोए बनी हर बाणी, मन नाम मजीठे रंगना। सो लह कला संपूर्ण फलया, अणत कला हुए ठाकुर चढ़या। अणत विनोद हर नाम सुख नानक, अमृत हर अमृत रस हर पुंज

तिलठार गढ़ा जिसे निवाजी गुरमुख साजी नाम वसै तिन अनहद वाजी तिस ही सुख तिस ही ठकुराई तिसे न आवै जम नेड़ा कीमत कागत कही ना जाई कहो नानक बेअंत गुसाई आद मद अंत प्रभ सोई हाथ तिसे कह नबेड़ा तिसे शरीक नाही रे कोई किसी पुते जवाब न हुई नानक का प्रभ आपे आपे कर कर वेखे चोज खड़ा मारू महला पंजवा अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी मधुसूदन दामोदर स्वामी रिखी केस गोवर्धन धारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मुरारे जगदीशर हर जीव असुर संघारे जग जीवन अविनाशी ठाकुर कट कट वासी है संगा धरनी धर ईस नरसिंह नारायण दाड़ा अग्रे प्रथम तरायण बावन रूप क्रिया तुद करते सब ही सेती है चंगा श्री राम चंद जिस रूप न रेखिया बनवाली चक्र पाण दर्श अनुपया सहस नेत्र मूर्त है सहसा एक दाता सब है मंगा भगत वचल अनाथ है नाथे गोपी नाथ सगल है साथे वासुदेव निरंजन दाते वर्ण ना साकू गुण अंगा मुकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण कमला कंत कल है कमला कंत करह कंतूहल अनद विनोदी निहसंगा अमोघ दर्शन आजूनी संभव अकाल मूरत जिस कदे नाही खाओ अविनाशी अभिगत अगोचर सब किच तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी मच्छ कच्छ पूरम आग्या अवतरासी केशव चलत करह निराले कीता लोड़ है सो होएगा निराहार निर्वैर समाया तार खेल चतुर्भुज कहाया सावल सुंदर रूप बनावह बेन सुनत मन बेन सुनत सब मुह हैगा बनमाला बेभूखन कमल नैन सुंदर कुंडल मुकट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सतसंगा पीत पितंबर त्रिभवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुखपणी सारंग धर भगवान बीठुला सारंग धर भगवान बीठुला मैं गणत न आवै सरबंगा ने कंटक ने केवल कहिए धनंजय जल थल है महिए मृत लोक पयाल समीपत अस्थिर थान जिस है अपगा पतत पावन दुख पै भंजन अहंकार निवारण है भव खंडन भगती तो कित दीन कृपाला गुणे न कित ही है गुण ही गुणे न कित ही है पिगा अहंकार निवारण है भव खंडन भगती तो कित दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिगा निरंकार अछल अडोलो ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो सो मिले जिस आप मिलाए आप कोई ना पावेगा आपे गोपी आपे काना आपे गऊ चराव बाना आप उपाव है आप खपाव है तुद लेप नहीं एक तिल रंगा एक जी गुण कवन बखाने सहस फनी सेखंत न जाने नवतन नाम जपै दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा ओट गही जगत

जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लै हृदय पराते, सगल नाम निदान तिन पाया, अनहद शब्द मन वा जंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जिहबा, सत नाम तेरा परा पूरबला, कहु नानक भगत पै सरनाई, देहो दर्श मन रंग लगा, तेरी गत मित तू है जान है, तू आपे कथ है ते आप वखाण है, नानक दास दासन को करियो, हर भावै दासा राख संगा, तेरी गत मित तू है जान है, तू आपे कथ है ते आप वखाण है।

असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वढ़ कमाए संत पापी पाप असंत मूर यार करे संत मलेर मार पाए असंत निंदक

अंतर्गत तीरस मरना सब गुरु तेरे बनाई बिन गुरु की आसानी ब्रह्मा सत सुहाम ब्रह्म कमल सुवेला भगत कमल कमल सिद्ध कमला कमल सिर्फ

कृता निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी

संस्पाओ संस्पिया संस्पाओ संस्क्रांति वाप संस्पो मनकन संस्पदत्मियां जात संस्पी असंधाता संस्प

निष्कपट निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नान।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गलवड हत्या कमाए संत पापी पाप अशांत मूड़े आर करे फिर संत मलेच माल पाए अशांत मन

हे अकाल पुरख अपने पंथ ते सहाई दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्ना तो पंथ नु विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभालदा दान खालसा जिनु

सपुत्र स्वर्गवासी सरदार जसवंत सिंह बीबी संत कौर अते बच्ची फैंसी कौर सपुत्री स्वर्गवासी तरलोचन सिंह अते बीबी कमलजीत कौर सच्चे पातशाह जी इस सुभाग जोड़ी दे आप जी के हजूर आप जी की कृपा सदका आनंद कार्ज होए गरीब नवाज आप जी के पावन पवित्र दरबार अंदर आनंद कार्ज की मर्यादा नु नभाउंदियां सुभाग जोड़ी पासो परिक्रमा करदियां बाणी सरवण करदियां पढ़दियां हुईयां बेअंत भुलां दी आप जी ने मुआफी बख्शिश करनी अगे तो सावधानता बख्शिश करनी रहमत करनी अपनी बाणी शुद्ध अते स्पष्ट पढ़न सुन दे योग आप बना लेना सतगुरु जी कृपा करनी इस सुभाग जोड़ी दे सिर ते सदा मेहरा भरिया बख्शा भरिया हथ रखना रहमता करनिया ग्रिस्त धर्म दियां खुशियां खेड़े झोली विच पाउणा ग्रिस्त धर्म दियां जिम्मेवारियां नूं निभाउण दे लई आप जी ने गरीब नवाज सदा मार्गदर्शन करदे रहना बल उद्यम प्रदान करना रहमता करनियां परिवारां विच सुख वरताउणी चढ़दी कला बख्शिश करनी आपसी प्रेम प्यार इतफाक दी दात बख्शिश करके नवाजना सतगुरु जी सेवकां दियां अरदासां बेनतियां दर ते प्रवान करनियां कारज रास करने गरीब नवाज सुभाग जोड़ी वालों आप जी नूं सुंदर पोशाके भेट कीते गए आप जी ने अंगीकार करना लोक परलोक पड़दे कजने बख्शिश कीते भंडारियां विचों कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान करना जी प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या होवे कृपा करनी बेअंत माया अरदास भेटाई आप जी ने कृपा करनी सेवकां दे खजाने भरपूर करने कारोबारां विच वाधे पाउणे किरत कमाइयां विच वाधे पाउणे बख्शियां करके निवाजना अपने चरण कमलां दी सदीव काल प्रतीति बख्शिश करनी सतगुरु जीओ बेअंत संगतां ने हाजरियां भरियां तिल फुल भेटावां माया आप जी के चरणा विच अर्पण कीती समूह संगत दियां हाजरियां भेटावां दर ते प्रवान करनियां माया सफली करनी सभना नूं दरों घरों चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना गरीब नवाज कृपा करो पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी हुक्म ते चलण दी मत बुद्ध प्रदान करो अखरवाद घाट भुल चुक मुआफ करने सरबत दे कार्ज रास करने सही प्यारे मेल जिन्ना मिले आप जी का नाम

कृता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक होशी सत्य।

साहब कले कर दो जी जात बंदा के ना सब नाल क्या मुड़ी सुन एवले का लिख जाने कोए एता तान सुनाले और हूँ

संकटाओ संक रंग रे पाप संक लोक मन रहम संक भगत गुरु ज्ञान विचार संक सभी का संता संक पूर्ण मोह।

अंत मूर्ख अंध घोर अंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाय संत पापी पाप असंत कूड़े आर करे संत मलेच मल पाए असंत निंद

कृता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैलम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच सोचे सोच न हो गई।

असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत काल वाए संत पापी पाप असंत मूर यार करे संत मलेच माल पाए असंत।

सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म होवे कछ खाई उठ पाए नानक गया कर्म खंड का।

सत्ता निर्भौ निर्वै अकाल मूर्त अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख गल वाए संख पापी पाप असंख मूर यार असंख मलेच मार पाए असंख निंद

अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अमोल अम

कर्ता निर्भौ निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उसी सत्य सुचे सोच न हो गई

अशांत मूर्ख अंत घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाय शांत पापी पाप अशांत पूरे अशांत मलेच मल पाए अशांत निंदक करें पाप नानक नीच कहें मारे न जाना एक जो तुम पाव है सही तरीका दूसरा सला संत नाम संत नाम राम राम संत दो।

पे जाए ए साला जी साला है नदियां से बाहर कौन सोम न जान समुद्र सा सरता गिरी पुल नौनी अंत न सुनी कहन नान अंत न करने देर नान अंत न देखन सुन

कर्ता निर्भौ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच।

संत अमर कर जाए, संत कलवट हृदय कमाए, संत पापी पाप संत कूड़े आर मरे फिराए, संत मलेर माल पाक खाए, असंत निंदक करे पास, नानक नीच कहे मिथ्या, मारे न जावा जो तुम पावे सही परिपाक।

मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाए शांत पापी पाप अशांत कूड़े यार करे फिर अशांत मलेश मार पाए अशांत निंदक करें पा नानक नीच कहें क्या बारे न जाना